0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार अबीन, यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को मालूम है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लोसी का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त ब्रांड।

रेडियो SBS की सर ये सुंदर भजन हरि हरन की आवाज में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम। अभी आपने सुना सुंदर सा भजन जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो पेश होगा नरेंद्र चंचल की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

इसमें इसके जरिए सुंदर भजन उस प्रोग्राम में नरेंद्र चंचल की आवाज में, नरेंद्र चंचल की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो चले ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चलिए रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर भजन जो सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।

निगम की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

विवेक की आवाज में सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीछ की गए है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री महालक्ष्मी आरती बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ए हसीनो।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम

चले प्रोग्राम में अबकी बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो वेव्स पे इसकी जरिए ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई विशाल मिटुन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है एक तो फिल्म खुदा हाफिज फिल्म सड़क नंबर 2 अंकित तिवारी और लीना भोज की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में अबकी बार भी

रीना भोज की आवाज में ये गाना पेश किया गया, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुन वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से। अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है

रेडियो SBS की सरिये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ सभी को स्वागत किया जा रहा है। हमेशा की तरह बहुत से सुनने वालों होते हैं जो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम को सुनते हैं, तो आप सभी सुनने वालों को बस स्वागत किया जा रहा है। गर्मा गर्म कॉफी या चाय, तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। चलिए गाना शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: काफ़ी उराशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: जब जब इश्क

एंड हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। जरूर आप सुनते ही रहना मुकेश और गीता दत्त के आवाज में।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते

सुनो वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए, आपकी हर एक कामों काज के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में चल चल रे मुसाफिर चल।

0: करोगे एक दिन मेरे प्यार को।
1: मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा जी की आवाज में ये गाना बस सुनते ही रहना।

से ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए है। चले किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश की आवाज में आपकी बार ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना।

बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। फिल्म का नाम आसपास, मोहम्मद रफी एंड लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में। मन मौजी फिल्म का नाम।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ पुरानी नख़्मे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी

आशा भोसले की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। कुछ पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और मुकेश और लता जी की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

और रेडियो SBS के जरिए ये दानाबस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एंड कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611।

SBS के जरिए कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: रेडियो वेस्ट इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

खास गाना बसपुर गांव में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हमराज उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए हिट फिल्म क्यों हो गया ना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ऐड फिल्म मेरे सदा मुसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की प्रोग्राम में। हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी की ओर। आपके बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। खूबसूरत प्यार भरी गाने नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए पेश किया जा रहा है। अपने प्यार के सपने सच हुए

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में अपने प्यार के सपने बस सच हुए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में चले मिलकर अब भी बार ये गाना को सुनते हैं।

काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। शहरू तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में उषा खन्ना एंड सुरेश वदकर प्रोग्राम में।

0: draaiende hits waar jij van houdt. Dit is Radio SBS.
1: चले प्रोग्राम में अब की बार मेहदी हसन और महनाज की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक खास पाकिस्तानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है दो साथी जीवन के।

जीवन के मेहरी हसन और महनाज की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर। पुरानी फिल्म मदारी उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना किशोर कुमार की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। लाइव की जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर उत्तराखंड से। ये प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत सा गाना होगा, और गाना होगा खासतौर पर मुकेश और लता जी की आवाज़ में।

की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: गुस्सा।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसराओ मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

फिल्म मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी, और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से, सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचा कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चड़के।

आप हमारी जान बन गए सुसमधुर मिथुन, विशाल मिश्रा एंड अजीज कौर. दिस लीजिए क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. यू लस्टर नार एट प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega gaeja, or muskuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दो सलमा आगा एंड बप्पी लहरी. एंड het volgende liedje in het programma Gietom Kelleher is gezongen door Kamal Khan uit de film Jinni Wet Sani Komt Roeberoe.

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

चढ़ाते रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचने की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है द फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitoon Kelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Sam Chakuru, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमारदु फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Jurwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

दुपट्टा मेरा वॉज आर द फिल्म मुझे कुछ कहना है एंड इसका सॉन्ग द अनुराधा श्रीराम आर द फिल्म अजनबी कॉम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या।

ना। दस बहाने करके ले गया दिल, द 2.0 फैसी आउट द फिल्म बागी 3 इस गजंग दो शान, तुलसी कुमार, KK, Vishal Dadlani en Shikhar Afghani. En dat komt uit de album Tera Chehra, gezongen door Adnan Sami Khan. Tera Chehra Jab Nazar Aaye.

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।